0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Scott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट अमल,
1: और मैं अवनी,
0: एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो इनर वॉइस।
1: वेलकम टू दिस स्पेशल रेडियो प्रोग्राम ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, अ की मोमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल।

0: जो अगस्त 1942 था, भारत राष्ट्रवादी उत्साह की चपेट में था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अंग्रेजों को तुरंत देश छोड़ के जाने के लिए कहा गया था। बंबई की हलचल भरे सड़कों से लेकर बिहार की ग्रामीण गांवों तक स्वराज या सेल्फ रूल की पुकार पूरे देश में गूंज उठी।
1: महात्मा गांधी के लीडरशिप में हजारों भारतीय ब्रिटिश राज के विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लाठीचार्ज, सामूहिक गिरफ्तारियां और क्रूर कार्रवाई का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कायम रहा। द रेवोल्यूशनरी स्लोगन डू और डाई बिकेम द रैलिंग क्राई फॉर अ नेशन डिटरमिंड टू गेन इट्स इंडिपेंडेंस।
0: अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ मार्शल लॉ को इम्पोज किया और उसकी बाद हुई हिंसा में कई फ्रीडम फाइटर्स मारे गए, यातनाएं दी गई और जेल में डाल दिए गए। फिर भी भारतीय लोगों ने डरने से इनकार कर दिया और अपनी सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध जारी रखा।

0: हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन अंत में दबा दिया गया, लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1947 में अंग्रेजों के पास हार मानने और भारत को आजादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। द सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट पेव द वे फॉर इंडिया टू बिकम अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन।
1: ये भारत छोड़ो आंदोलन की याद में एक विशेष कार्यक्रम था जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

0: अगले सप्ताह हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: अपने देश से मोहब्बत करें, स्वस्थ रहें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: Niscott Agnel Radio.
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: Scott Agnell Radio.

0: स्कॉट एग्नेल रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो।
2: मैं हूं एनोश।
3: और मैं हूं जेफरी।
2: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
3: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
2: एवरग्रीन सॉन्ग? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
3: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
2: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: सुन सुन सुन, अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई, गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए हैं, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में, जय हंगामा कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
4: हम काले हैं

0: अच्छा अनुज, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे एस से लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह क्या गाना था। अच्छा अनुष ये बताओ ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जांपल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: हाय, तेरी जुल्फें भाई साहब, क्या लग रहा है?
1: अबे तुझे क्या हो गया?
0: तेरी जुल्फें देख भाई, क्या मस्त लग रही हैं।
1: दूर हट मुझसे।
0: अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो यार गाने की बात कर रहा हूँ। गाना सुन, बहुत प्यारा है भाई, जुल्फों वाली जाने जहाँ।

0: क्या मेलेडी थी गाने की, मजा आ गया।
1: अच्छा अब ये बता नोश, तू मोहम्मद रफी साहब को जानता है?
0: हाँ भाई, कौन नहीं जानता, मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक है।
1: अरे उनका एक सॉन्ग है जिसने तहलका मचा दिया था।
0: कौन सा?
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए।
0: बजा दे फिर।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,

0: अरे यार जेफरी, आज पता बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ।
1: क्या हुआ?
0: मैं रास्ते में आ रहा था कॉलेज के लिए और मेरा बैग फट गया।
1: अरे आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ।
0: क्या हुआ तेरे साथ?
1: मैं आ रहा था और मेरी जींस फट गई।
0: अरे बाकी सारी चीज़ें तो टूटती फूटती रहती हैं यार, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा अमर रहती है, वो है प्यार।

0: आज जेफरी का मूड बहुत ही अच्छा।
1: अच्छा तो फिर इसी बात पे गिफ्ट दे।
0: ओह क्या छोटी बात कर दी तूने आज। ये ले भाई तू चॉकलेट ले।
1: भाई मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब कोई हद से ज्यादा प्यार दिखाता है ना, समझ लो पक्का कुछ ना

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उससे कहीं ज्यादा अटपटा और चटाकेदार स्ट्रीट फूड है भारत की गली।

0: करना पड़ जाए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी डिश जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के आपके पेट और दिमाग दोनों में टर्बुलेंस आ सकता है। सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही ये डिश का नाम है मैगी मिल्क शेक। नाशिक महाराष्ट्र में मशहूर देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्क शेक। मजेदार क्रीमी मिल्क शेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आखिर भारत की जनता में कितना दम है। आज के कॉलर से जानते हैं उनकी अटपटी डिश के अनुभव के बारे में।
1: हेलो,
0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: हाय मैडम, मेरा नाम गार्गी है और मैं आपको ना अपने एक फूड डिजास्टर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती

0: की है, आप जो भी बताए।
1: मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है, और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो, समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी, लाल चटनी, लाल चटनी चलो मीठी

0: खा लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्टिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन एक बाइट लेते ही उसको पूरा फेंकना पड़ा।
1: अरे बाप रे। धन्यवाद गार्गी आपके कॉल के लिए। ऐसी ही कई अनोखी वन इन अ मिलियन डेडली फूड कॉम्बिनेशंस मैं लेकर आऊंगा सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नाडन पिंटो साइनिंग ऑफ।
2: मंजिले अनलिमिटेड।
3: हेलो एंड वेलकम, आप सुन रहे हैं इन वॉइस रेडियो और मैं हूँ विरोनिका। तो आज हम सुनने जा रहे हैं मिस शीतल राजपूत को, जो कि न्यूज एट 24 जर्नलिस्ट और एक न्यूज एंकर हैं, सिर्फ और सिर्फ मंजिले अनलिमिटेड पर।
2: मंजिले अनलिमिटेड।
4: बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, एंड बिलीव मी दैट इज द बॉटम लाइन, दैट इज द मंत्र। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर स्ट्रगल, इन योर एंडेवर्स, इन योर ड्रीम्स, यू कैन डू एनीथिंग। वी हैव चैलेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हर तरफ चैलेंजेस होते हैं, एंड आई सी यंग फेसेस, यंग dynamic faces. You haven't seen the world as yet. You're just starting out. You're just foraying into this very charismatic field of journalism, whether it is TV journalism or print or any kind of journalism. Believe me, this is the most challenging, most fulfilling profession in the world. And I'm saying this after being in this profession

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके

कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से, एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से, अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उस जगह पर तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पे पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है? आपने कैसे इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो हैं वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
2: In a voice, radio.
1: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की
3: कदर है।
1: प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं। जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं।

0: चीजें। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
1: इंडिया दिल से।
2: Inner Voice, Miss Gotham, Agnel Radio.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है। वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
2: Inner Voice Radio।
1: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकिया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर थ्री स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्ताएं मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
0: इंडिया दिल से।

0: बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
1: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
0: क्यों क्यों?
1: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
0: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
1: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
2: इसलिए तो मैं बोलती हूँ, हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
4: और मैं भी।
1: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
0: बच्चों, जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से, और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
2: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
2: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose and mouth. From there, the virus can enter your body and make you sick.
0: बच्चों, ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊँ?
1: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
5: If you develop fever, cough and difficulty in breathing, seek medical advice. Call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
6: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
7: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
8: Do you know? Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am on 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
9: In a Voice Radio.
8: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate, more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलिडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know? Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art, created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18 karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know?
12: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलिडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
4: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
1: क्यों क्यों?
4: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
1: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
4: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
4: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
1: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
5: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
5: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस